0: is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
0: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
2: Chicken banana. चिकन बनाना
3: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
1: दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट साल्स नैशविल हॉट चिकन दे डोंट जस्ट मेक इट दे मेक इट अनफॉरगेटेबल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स बोल्ड फ्लेवर्स जंबो चिकन टेंडर्स नैशविल सैंडविचेस दैट एक्चुअली हिट लोकेटेड इन प्लेनो एंड रिचर्डसन साल्स नैशविल हॉट चिकन वी फिक्स हैंग्री
4: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
5: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
4: सच में सब संभालेंगे
5: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
7: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

जी हाँ, आप जी ले जरा वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल और रहूंगा आपके साथ में 9 बजे तक। और भीगे भीगे नगमे लेके आया हूँ मैं आपके लिए। बहुत बारिश हो रही है यहाँ तो, और उम्मीद करता हूँ कि आप बारिश में अगर ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव सेफली, कीप योर फोकस ऑन द रोड एंड ऑन योर ड्राइविंग। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट फॉर यू, मेक श्योर योर ड्राइविंग सेफ। एंड वी आर ट्यूनिंग इन टू द ऑसम मौसम सेगमेंट, जो मौसम बदला है कुछ ही मिनटों में, माय गुडनेस क्या बताऊं मैं आपको। और अच्छी अच्छी भीगी भीगी रिक्वेस्ट आ रही है, और मरियम और सोहेल के रिक्वेस्ट पे लेके चलते हैं आपको लैला की दुनिया में।

यहाँ कोई धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन देखा था हमने, ये डायलॉग सुना था हमने, ये डायलॉग फ्रॉम द मूवी रईस, जिसमें से लिया था हमने गाना ये आपके लिए ऑन द फरमाइश ऑफ मरियम एंड सोहेल। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। बारिश का मौसम तो हो गया है, बारिश का माहौल हो गया है, और आई एम श्योर कहीं कहीं समोसे और पकौड़े बन रहे हैं, कहीं कहीं चाय बन रही है, और कुछ मजा लेते हैं इस मौसम का विथ लेजी लम्हे।

जी हाँ, लेजी लम्हे वल बताते चलता हूँ आपको जरूरी जानकारी। इफ़ यू आर ड्राइविंग, मेक श्योर यू ड्राइव सेफ, फोकस ऑन योर ड्राइविंग, लीव द एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक टू मी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वॉल्यूम कम कर देना, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानूंगा। एंड अनफॉर्चुनेट अगर हादसा हो गया आपके साथ, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन कार और ट्रक एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, वेल अटर्नी उमर ख्वाजा का नंबर जरूर याद रखिएगा। ही विल फाइट द केस फॉर यू एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल एंड यू नीड द राइट रिप्रेजेंटेशन बाय attorney to make sure that you are represented and compensated fairly. You don't pay until you win. For a free consultation, do remember 469-300-5046, 469-300-5046, or you can visit their website, which is attorneyomar.com. Ji haan, attorneyomar.com. Let it rain over me.

Let it rain over me. In fact, I love getting going out when it's raining and getting wet in the rain and absolutely enjoy that. बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं इस बारिश में. और क्या बताऊँ मैं आपको, होप यू आर एंजॉइंग द रेन्स दैट TFW इज ग्रेस्ड विद राइट नाउ थ्रू आउट द मेट्रोप्लेक्स. इट्स स्प्रिंकल शावर्स हियर एंड देयर, समवेयर इट्स डाउन पोर, समवेयर इट्स जस्ट स्प्रिंकल्स. नेवरदलेस, लेट्स कीप दिस ऑसम ऑसम सेगमेंट गोइंग. एंड बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सॉन्ग, लेट मी रिमाइंड यू दैट इफ यू नीड फाइनेंशियल गाइडेंस इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस that we are upon right now, that is the times are upon us, and My Time Equity, which is led by CPS Sudhir Pai, offers portfolio management, real estate and alternative investments. Do visit their website, which is mytimeequity.com, or you can call their office at 469-702-1272. And if the financial ups and downs have gotten you, do call My Time Equity, CPS Sudhir Pai, at 469-702-1272. Let's continue with Peaky Peaky. Well, बहुत सारी यादें होती हैं. इनफैक्ट बॉलीवुड हैज़ रोमांटिसाइज्ड रेन इन सो मेनी डिफरेंट वेज, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई वांटेड टू डू दिस ऑसम ऑसम सेगमेंट व्हाइल इट इज़ रेनिंग. तेरी मेरी कहानी बनके जो इश्क बरसे,

0: जी हाँ, तेरी मेरी कहानी है बारिश को पानी बनके जो इश्क बरसे। तेरी मेरी कहानी टेकन फ्रॉम द मूवी गबर इज बैक। लाइक आई वाज टेलिंग यू कि बॉलीवुड ने बारिश को इतना रोमांटिसाइज कर दिया। इनफैक्ट जस्ट इट्स नॉट जस्ट रोमांटिक इमोशन दैट दे डिस्प्ले। इनफैक्ट लेटली यू हैव सीन बारिश में फाइट्स हो रही है, बारिश में डांस हो रहा है, बारिश में गाने गा रहे हैं, बारिश में बहुत कुछ हो रहा है, बारिश में सारी स्टोरी चेंज हो रही है कहीं कहीं तो। एंड कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि बारिश सिर्फ वो फिल्टर, बारिश वाला फिल्टर लगा देते हैं आगे, एंड द एक्ट्रेस एंड द एक्टर बिहाइंड द फिल्टर आर नॉट इवन गेटिंग वेट। बस थोड़ा पानी छिड़क दिया उन पे और आगे फिल्टर लगा दिया और हमको चूना लगा दिया उन लोगों ने। बट कोई नहीं, चलिए आपको लेके चलता हूँ अगले गाने की ओर और बताता हूँ आपको। म्यूजिक मेक्स a day extra special, and that's the reason why we are celebrating World Music Day. Phanisha is celebrating World Music Day because every moment has a song. Har lamhe ke liye koi na koi dhun to zarur hai aur har mood ke liye melody to banti hi hai, whether it be romance or a heartbreak. Romance pe itne sare gaane, heartbreak pe bhi itne hi gaane aapko mil jayenge. Wedding anthem song mil jayega aapko, party songs mil jayenge aur kai sare songs jo aapke liye go to songs hote hain. From June 1st to June 15th, fill out the Google form that is there on the website with your favorite song across different music genres. Phanisha will select the most loved songs from each genre and the song will become the heartbeat of millions. Agar aapke zindagi mein koi, aapki zindagi mein koi acha sa gana ho jo zyada maine rakhta ho across different genres, well, do go and fill out phanisha.net. jaiye wahan pe form fill out kijiye and you will be in for winning exciting prizes. Do visit phanisha.net and follow the social media pages for more details. Celebrating World Music Day coming up soon. Every moment has a music attached to it. चलिए लेके चलता हूँ अगले गाने की ओर। जैसा बारिश, well, बारिश में आग कौन लगाता है? well, लगाते हैं लोग, सावन में हम लगाएंगे आग आपके लिए। लेके चलता हूँ आपको इस गाने की ओर।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

जी हाँ, लगाई इन्होंने सावन में आग, और लगाते हैं हम भी इस आग को ऐसे ही चलाते रहते हैं। हम आगे लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और लेके चलता हूँ टू अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द यस्टर ईयर्स। दिस इज़ अ सॉन्ग फ्रॉम अ ग्रुप कॉल्ड एवरी थिंग बट द गर्ल, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। समटाइम्स जिंदगी में कोई ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसे मौसम आते रहते हैं कि यू आर क्रेविंग फॉर द रेन जस्ट लाइक द डेजर्ट्स मिस द रेन।

0: We're approaching a short commercial break, so I will miss you for a few brief moments, and we will be right back with more music coming your way right after the.
1: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com. देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है.
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
10: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

आज ब्लू है पानी पानी, आज दिन भी था एकदम सनी सनी। चलिए लेके चलता हूँ अगले गाने की, और उससे पहले बताता हूँ मैं आपको ड्रीम होम मॉर्गेज के बारे में। मॉर्गेज रेट्स हैव बीन गोइंग अप एंड डाउन, इन फैक्ट समटाइम्स इट फील्स इट्स वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट्स दैट फेड सेट्स। ऑफ कोर्स ट्रेजरी बॉन्ड्स पे ज़्यादा फोकस होता है इस इंटरेस्ट रेट्स के रिफ्लेक्शन का। वेल ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। दे लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर्स स्ट्रेस फ्री and tailored mortgage solutions for you. Make your dream home a reality with Dream Home Mortgage. For details, you can call 972-245-5626. 972-245-5626 है इनका नंबर, और इनकी वेबसाइट है dreamhomemortgage.com. जी हाँ, dreamhomemortgage.com.

वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ द ऑसम ऑसम सेगमेंट. अगर आपको कुछ सुना हो, अगर मैंने नहीं सुनाया हो तो फिर मुझे कॉल करना. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. एंड ऑफकोर्स बारिश के मौसम में अगर ये गाना मैंने नहीं बजाया तो फिर क्या सेगमेंट किया है मैंने ऑसम मौसम पे.

यहाँ दैट वॉज अ क्लासिक सॉन्ग. ऑफकोर्स अगर मेरी राय मानिए तो दैट सॉन्ग फॉर मी इज ओन्ड बाय रवीना. कैटरीना डिड अ ग्रेट जॉब बट रवीना एब्सोल्यूटली ओन्स भीगी भीगी नॉट भीगी भीगी ही ओन्स टिप टिप बरसा पानी. रिक्वेस्ट आई थी भीगी भीगी गैंगस्टर के सॉन्ग की और लगाता हूँ वो गाना इस गाने के बाद.

मैजिक द केमिस्ट्री ऑफ गोविंदा एंड करिश्मा कपूर फ्रॉम यस्टरडे. किसी दिन करेंगे हम इनके बारे में बात, इन पे शो करेंगे. इन द मीन टाइम लेट मी टेक यू टू द रिक्वेस्ट दैट केम फ्रॉम द मूवी गैंगस्टर. एंड व्हेन वी कम बैक वी विल पिक अप सम पेस, वील टेक द शो अप अ फ्यू नॉचेस. एंड कीप योर रिक्वेस्ट कमिंग 9722355555 स्टूडियो का नंबर. दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल.

वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट सौमिल, रहूंगा आपके साथ में 9 बजे तक। और बदली सी हवा तो जरूर है मेट्रोप्लेक्स में, और हवा से हमको रिक्वेस्ट आई है एक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, एक क्लासिक सॉन्ग फ्रॉम नन अदर देन हसन जहांगीर। ऑफकोर्स सुनाता हूँ ये गाना थोड़ा, और फिर नया वर्जन भी सुनाऊंगा इसके बाद। लेट मी टेक इट द ओरिजिनल वर्जन एंड देन आई कैन ब्रिंग यू टू द मुबारक वर्जन ऑफ द सेम सॉन्ग।

जी हाँ, ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिलसिला चलता ही रहेगा। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की और रिक्वेस्ट आई थी सोहेल की रिक्वेस्ट पे, लेके चलता हूँ आपको टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक, दिस टाइम टेकिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ मेरे यार की शादी।

जी हाँ दरो शरारा शरारा टेकन फ्रॉम मेरी यार की शादी वाल पिकिंग अप सम पेस लेट्स किक इट अप अ फ्यू नॉचेस बिफोर वी कॉल इट अ नाइट. चलिए लेके चलता हूँ व्हाट इज स्क्रीनिंग व्हाट इज प्लेइंग राइट नाउ ऑन द सिल्वर स्क्रीन्स एंड अ थिएटर नियर यू. लेट्स टेक यू टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक आइकॉनिक नंबर दैट हैज बीन रिक्रिएटेड रीमिक्स्ड एंड ब्रॉट टू यू. ए है जवानी तो इश्क होना ही था.

चुनरी चुनरी टेकन फ्रॉम है जवानी, तो इश्क होना ही है, ज़रूर होना है, क्यों नहीं होना है, इनफैक्ट इश्क हो रहा है। इट रिलीज्ड ऑन द 5th of June एंड इट्स प्लेइंग राइट नाउ ऑन द सिल्वर स्क्रीन्स एट ए थिएटर क्लोज टू यू ऑफ कोर्स। जी हाँ, दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल और रहूंगा आपके साथ में 9 बजे तक, करूंगा आपका मनोरंजन राइट हियर। सो व्हेन यू गो टू दैट पार्टी, व्हेन यू सेट योर फुट ऑन दैट डांस फ्लोर एट द पार्टी, यू विल बी रॉकिंग लाइक दे से, इफ द पार्टी इज रॉकिंग डोंट बॉदर नॉकिंग। लेट्स टेक इट दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

जी हाँ, जन्नत सजाई हमने आपके लिए, वेल म्यूजिक शो हमने बनाया आपके लिए राइट हियर ऑन जी लिजरा। दिस इज योर होस्ट आरजे सोमिल। अगर आपको कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो, कुछ शेयर करना हो, जरूर कॉल कीजिए। 9782355555 है स्टूडियो का नंबर।

जी हाँ, ये जवानी तो है दीवानी, जरूर दीवानी है, क्यों नहीं दीवानी है। वेल दिस वाज विशाल शेखर क्रिएशन, एंड जैसे मैंने बताया था आपको, विशाल शेखर कॉन्सर्ट इज कमिंग टू डैलस, जरूर वेल गोड कैश प्रोडक्शंस एंड गेट योर टिकट्स फ्रॉम, लेट मी गिव यू दैट, कैश पटेल प्रोडक्शंस, एंड गेट योर टिकट्स फॉर विशाल शेखर कॉन्सर्ट दैट्स कमिंग अप ऑन July 12th। चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्ट आई है दुर्रे की रिक्वेस्ट पे, सुनाता हूँ मैं आपको ये गाना, टेकन फ्रॉम किल दिल, एंड सम सॉन्ग्स हैव द म्यूजिक दैट एंकर्स इन योर साइकी, दिस इज वन सच सॉन्ग, दिस इज वन सच म्यूजिक।

जी हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, कहता है दिल झीले जरा आ पास आ ए हम नवा, क्यों ना आप और हम झीले जरा। वल पहुंच गए हम आखिरी सेगमेंट ऑफ द शो। दिस इज योर होस्ट आरजे सौमिल, और बहुत मजा आया आपके साथ आज शो करने का। बहुत महीनों के बाद मैं आया हूँ यहाँ पे, और इफ आई एम अ लिटिल रस्टी डू फॉरगिव मी, बट इन द मीन टाइम बहुत सारी रिक्वेस्ट आई आपकी, बहुत सारी बातें की आपने हमसे, बहुत मजा आया। लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की, और थोड़ी बहुत शरारत ही कर लेते हैं चलते चलते।

जी हाँ, कीपिंग सेम टेम्पो गोइंग थ्रू दिस सेगमेंट. दिस इज योर होस्ट सोमल साइनिंग ऑफ सून. लास्ट सेगमेंट ऑफ द आवर ऑफ द नाइट. नॉट टेकिंग एनी मोर रिक्वेस्ट. आई हैव प्लेंटी टू फिल फॉर द रेस्ट ऑफ द सेगमेंट.

same tone tempo going, taking you home safely in this last segment. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर.

जी हाँ, इट्स द टाइम टू डिस्को एंड मेरा टाइम हो रहा है, तो मुझे आप जाने दीजिए। मैं डिस्को को खिसको के साथ राइम कर रहा था, बट टोटली बॉम्ब्ड। नेवर माइंड, वेल लेट्स टेक इट द नेक्स्ट ट्रैक एंड फिर से मिलूंगा मैं आपको अगले वीक। इन द मीन टाइम, मैं आप करो डिस्को और मैं करता हूँ खिसको इन द मीन टाइम।

ये चलते चलते आखिरी दुकान सुनाते चलता हूँ, चलने का वक्त हो रहा है मेरा और फिर मिलूंगा मैं आपको अगले वीक का। दिस इज़ योर होस्ट आरजे सोमिल और बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ आज की शाम का शो करने के लिए। थैंक यू फॉर मेकिंग जिले ज़रा योर शो।

दिखला दूंगा तारे तुम्हें जब होंगे रूबरू मैं और तू। चलिए दीजिए मुझे आप इजाज़त, चलते चलते आखिरी गाना सुनाते चलता हूँ मैं आपको, और कहता हूँ आपको फिर से मिलूंगा मैं आपको अगले वीक। इन द मीन टाइम वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, इससे लिया है ये गाना, रीमिक्स वर्जन ऑफ ऊंचा लंबा कद। फाइनली इट्स वेल लाइफ गोज ऑन राइट। कटरीना कैफ वॉज डूइंग द रीमिक्सेज ऑफ रवीना टंडन। नाउ कटरीना कैफ्स हिट सॉन्ग ऊंचा लंबा कद इज रीमिक्स्ड विद दिशा पटनी। लाइफ, द सर्कल ऑफ लाइफ गोज ऑन।

0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
6: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession. Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
4: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
4: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
5: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
4: सच में सब संभालेंगे
5: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 Vanessa Events, your celebration partner.

0: Asia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: हाय नी तेरा सूट भी हाय नी तेरी साड़ी भी हाय नी तेरा लहंगा तेरी ड्रेस ते तेरा कोका डिजाइनर

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: तेरी ये बारी सब की तूने वाट लगवा दी लड़की।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: Don't miss out on the dance party of the year. Join the club Phanasia Revolution and let the good times roll.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: आनंद लगे रहो।
1: I love you।
2: आनंद तेरा फोन आया यार।
0: अरे
2: चल चल।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनीजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: ਸਜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਤਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡ
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: जिद छड़ दे हरबीर, जे सरकार नहीं कुछ कर सकी तो तू कर लेगा।
1: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं ज्योंदी करूंगा हॉकी।

0: तो रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Pain of God. It's going down.

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: प्रवीण, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
1: सर। वो
0: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community. He calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
9: ओह हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: जिस बात का डर था वही हुआ, lymphosarcoma of the intestine.
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
14: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, any location you're close to. Call 214-666-6259 or visit passionhealthprimarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
10: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
15: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer ab Dallas mein.
10: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
15: Thousands ki life बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
16: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
16: कहाँ?
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
10: Foodistan in Aubrey. Everything they see, one place, one vibe.
17: Aji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
18: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
17: Par यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
12: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
13: Chicken banana. Chicken banana?
14: Bro, banana nahi, banana. Matlab, make the chicken right.
15: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
16: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न। समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com।
2: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
2: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
3: डूड, इट्स Page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
2: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
4: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
5: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
6: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
5: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
10: Hello everyone, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
3: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
4: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
3: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
4: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
3: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
4: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
3: नंबर बोल जल्दी।
4: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
5: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
6: बिग अचीवमेंट्स डिजर्व अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशंस। Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो।
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
16: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
16: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर
14: यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
19: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

वेलकम नमस्कार खुशामदीद फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। जी हाँ जस्ट चिल वैसे तो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एवरी सैटरडे एंड संडे 10 AM टू नून होता है मेरा और आपका साथ, लेकिन आज एक घंटा बोनस हमारा और आपका साथ रहेगा एज आई एम कवरिंग फॉर एक रूप एज वेल। सो येस आई बी विद यू टिल नून। स्टूडियो का नंबर 9722355555। जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल।

वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी मिलन. अच्छा, आपको अगर कोई भी फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए, राइट, या आपको कुछ अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाना है, रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना है, कुछ और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पता करनी है, देन आई वुड रेफर यू टू CPA सुधीर पाए. जी हाँ, माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाए जो हैं हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. आप चाहे प्लानिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म वेल्थ या रिटायरमेंट और ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, वेल माई टाइम इक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. सो यू नीड टू विजिट mytimeequity.com या आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 469-702-1272 टूडे.

वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी कर्ज। अच्छा, कई बार होता है कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड डॉक्टर कुछ 5 मिनट 10 मिनट मैक्स आपके साथ बैठ के कुछ दवाई लिख देते हैं, नहीं लिखते हैं, वट एवर, एंड यू जस्ट फील कि यार मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, मेरी मेरे जो इश्यूज थे वो तो समझे ही नहीं, राइट? सो एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम। क्योंकि पैशन हेल्थ में यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली, एंड फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दिस इज नॉट ऑल, यू नो, पैशन हेल्थ इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो अगर आप चाहें, यू नो, दे आर नाउ हायरिंग एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस एंड साइकेट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज, तो आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। यू नो, इफ यू आर पैशनेट अबाउट पेशेंट केयर, देन सेंड योर रेज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com या फिर आप उन्हें टेक्स्ट करें 217-454-46 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियन डॉट कॉम और कॉल 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आर पैशन।

Taken from the movie Chit Chor, that was Gori Tera Gaon Bada Pyara. Well, listeners, अगर आपका song लगेगा प्यारा तो आप कुछ जीत सकते हैं. जी हाँ, World Music Day आ रहा है 21st June को, and Funasia is celebrating World Music Day because every moment has a song. होता है ना कि हर mood पर एक गाना, एक melody याद आती है, चाहे वो romance हो या heartbreak हो रहा हो, there is a song for you, right? Well, a wedding anthem or a party favorite. Well, we want to know your top picks from, अभी शुरू हो गया ये ऑलरेडी, जून 15 तक चलेगा. सो यू कैन फिल आउट आर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज. मतलब बहुत सी कैटेगरीज होती हैं म्यूजिक में, आप अपना फेवरेट सॉन्ग उसमें लिख डालें एंड फन एशिया विल सेलेक्ट द मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स फ्रॉम ईच कैटेगरी एंड द सॉन्ग दैट हैव बिकम द हार्ट बीट ऑफ मिलियंस. एंड 21st जून को, यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे वाले दिन, एवरी फन एशिया शो विल बी डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरी फीचरिंग द विनिंग सिलेक्शंस. एंड हियर्स द एक्साइटिंग पार्ट, यहाँ पर आपका पार्ट आता है. जी हाँ, द लिसनर्स हु सॉन्ग्स चॉइसेस मेक इट इन टू आर फाइनल प्लेलिस्ट द मोस्ट विल विन एक्साइटिंग प्राइजेस. तो आप ये गूगल फॉर्म भरें, विजिट funasia.net और फॉलो आर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स. सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ म्यूजिक विद फनेशिया 104.9 FM.

ऑल राइट, वेल दिस इज मधुलिका, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। वैसे तो मैं जस्ट चिल में देती हूँ आपका साथ सुबह 10 से 12 बजे तक ऑन सैटरडे एंड संडे, लेकिन टुडे आई एम कवरिंग फॉर एक रूप एज वेल। सो आई एम हियर विद यू फ्रॉम 9 AM टिल नून। स्टूडियो का नंबर 9722355555। देयर इज अ गिव अवे फॉर यू कमिंग फ्रॉम फन पिज्जा किचन। जी हाँ, सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्जा किचन। फॉर मोर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com। और अब है आपके लिए ये सवाल, विच कैन विन यू अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन। सो आपको बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे देना है। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। आपको मुझे बॉलीवुड के कोई भी ऐसे दो गाने बताने हैं जहाँ पे एक प्रपोजल हो रहा हो, मतलब या तो लड़का लड़की को प्रपोज कर रही, नहीं, लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा हो या लड़की लड़के को प्रपोज कर रही हो। सो ऐसे कोई भी बॉलीवुड के दो गाने, रेट्रो हो, आजकल के हो, इट कुड बी एनीथिंग। सो बॉलीवुड के कोई भी ऐसे दो गाने जहाँ पर कि कुछ प्रपोजल की बात हो रही हो वो मुझे बताने हैं, एंड यू कैन विन दिस $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन।

0: ऑलराइट, तो मैंने पूछा था सवाल कि मुझे बॉलीवुड की कोई भी ऐसे दो गाने बताएं जिसमें कि कुछ प्रपोजल हो रहा हो, या तो लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा हो या लड़की लड़के को. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर. हाउ
1: हाय,
0: आर यू?
1: आई एम गुड, थैंक्स. हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग ग्रेट. एंड व्हाट्स योर नेम?
1: माय नेम इज आशीष गुप्ता.
0: ऑलराइट आशीष, तो बताइए कौन से दो गाने बताने वाले हैं आप?
1: सो फर्स्ट सॉन्ग इज दैट मुझसे शादी करोगी.
0: बिल्कुल डायरेक्ट है ये तो. ओके ठीक है, डन.
1: सेकंड वन इज कह दूं तुम्हें या चुप रहूं.
0: क्या बात है, ऑसम आशीष, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. यू वन दिस गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू एंड आई विल प्ले वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट यू मेंशन फॉर आवर लिसनर्स. अच्छा, क्विकली, हैव यू एवर यूज्ड अ सॉन्ग टू प्रपोज?
1: Not directly. I use the poem actually.
0: Acha. All right. Well, thank you so much for calling in. I'll take you off air and take some details from you. All right.
1: Sure. Thank you.

वेल दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी दीवार. अच्छा होता यह है कि आप ऑफ कोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, यू आर स्टेइंग सेफ. लेकिन कई बार होता है दैट यू डू गेट इन्वॉल्व इन अ कार या ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट. देन आपको अटर्नी ओमर ख्वाजा रखने हैं याद, एज ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. ही विल डील विद ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज एंड यू डू नॉट पे अंटिल यू विन. सो फॉर फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 4693005046 और विजिट अटर्नी ओमार डॉट कॉम. दैट्स अटर्नी ओमार डॉट कॉम.

वेल, एतबार तो आप ड्रीम होम मोर्गेज पे भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी 50 स्टेट्स में दे आर लाइसेंस्ड. जी हाँ, योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मोर्गेज. सिंस 1998, ड्रीम होम मोर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटी विद पर्सनलाइज मोर्गेज सोल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. कई बार होता है ना कि आपको प्रोसेस भी नहीं पता है, कन्फ्यूज हैं. वेल, दे विल गाइड यू एंड हेल्प यू, एंड सो यू कैन स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टूडे. आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 9722455626, और विजिट ड्रीम होम मोर्गेज .com फॉर मोर डिटेल्स. ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
3: Paid for by Mark Hill for Mayor.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, because Indian Attire Frisco Summer Sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
7: Wait, itna sab aur price?
6: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
14: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू। कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉट कॉम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
10: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
15: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
16: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
15: कहाँ?
17: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
16: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
18: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
19: Don't touch that dial. Keep listening.
20: Love.

हेलो एंड वेलकम, सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, जहां करते हैं हम as the name suggests, just chill. Well, just chill में मैं देती हूं आपका साथ सैटरडे एंड संडे सुबह 10 से लेके दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. सैटरडे होता है ट्रैवल सेगमेंट और संडे होते हैं कुछ फन फैक्ट्स आपके साथ शेयर, और सुनते हैं कुछ मेरी और कुछ आपकी पसंद के गाने. सो स्टूडियो का नंबर वन मोर टाइम, 972-235-5555.

That was taken from the movie हमसे है मुकाबला. सुना ना ये गाना बड़े दिनों बाद. well, मुझे याद आया तो मैंने कहा क्यों ना जब मुझे याद आया है तो हमारे डालस के लिसनर्स को भी ये गाना याद दिला दिया जाए. well, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि July 12th को क्या होने वाला है. जी हाँ, विशाल एंड शेखर द डियो बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड बिगेस्ट सुपर हिट्स आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डालस. सो बेसिकली आपकी जो प्ले लिस्ट है इज अबाउट टू कम अ लाइव ऑन संडे July 12th at the Curtis Culver Center in Garland. Tickets are now on sale at cashpatelproductions.com. So go ahead and book your tickets now.

0: Gone.
1: Neha Kabos.
2: Well, that was taken from the movie Dostana, right? And चलिए जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम जस्ट चिल में कुछ फन फैक्ट्स भी करते हैं आपके साथ शेयर. तो आपको बताऊं कि जो अपनी ह्यूमन आई है ना, कैन डिटेक्ट अ कैंडल फ्लेम फ्रॉम माइल्स अवे ऑन अ क्लियर डार्क नाइट अंडर आइडियल कंडीशंस. आपको एक और बात बताऊं, दैट आप छींक नहीं सकते विद योर आईज ओपन. जी हाँ, यू कैन नॉट स्नीज विद योर आईज ओपन. योर आईलिड्स रिफ्लेक्सिवली क्लोज ड्यूरिंग अ स्नीज. अब आंखों की बात चल ही पड़ी है तो मैं आपको बताऊं दैट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट सेइंग गुडबाय टू ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो ध्यान से सुने. जी हाँ, हियर समथिंग दैट यू मे नॉट नो. लेसिक इज जस्ट वन ऑफ सेवरल विजन करेक्शन ऑप्शंस अवेलेबल टुडे. क्या है ये, कहाँ है, बताती हूँ. डॉक्टर शहजाद बाटीवाला, अ फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई इन प्लेनो, इनकी अप्रोच बड़ी ही सिंपल सी है. Educate first and so that you can make the best decision for your eyes with confidence. So if you want to learn about your options and see if you are a candidate, aap unhe call karein 214-972-2020 or visit lasikplano.com. And ye zarur yaad rakhiyega that do mention Funasia 2020 to receive a free consultation. So Visionary Eye, helping you see your future more clearly.

well, इस गाने में ना मेरे को वीडियो बड़ा अच्छा लगा था, बिकॉज इतनी क्यूट क्यूट से उसमें पेंगुइन्स भी दिखते हैं. एंड पेंगुइन से मुझे याद आया दैट इफ़ यू वांट टू वॉक सेफली ऑन आइस, यू नो, देन यू नीड टू टेक शॉर्ट पेंगुइन स्टेप्स. दे आर सच में. और आपको पता है, वॉकिंग वाइल्ड टेक्स्टिंग चेंजेस द वे मोस्ट पीपल वॉक, इवन इफ दे डोंट रियलाइज इट. वो या तो छोटे स्टेप्स लेंगे या धीरे हो जाएंगे. टेक्स्टिंग, वेल, while walking while driving is bad, so avoid, guys, avoid. Well, if you do get involved in a car or truck accident or a slip and fall incident, then attorney Omar Khwaja ko rakhe yaad, as he'll fight your case and help you get the compensation that you deserve. He'll deal with all the stress of insurance companies, and you do not pay until you win. To ek free consultation ke liye unke saath aap call karein. The number is 469-300-5046, or you can visit attorneyomar.com. That's attorneyomar.com.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
4: चिकन बनाना,
5: चिकन बनाना
6: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
8: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
9: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
10: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
9: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got

Well, that was a song request coming from Shreya. Shreya, thank you so much for tuning in. And yes, अगला गाना प्ले करूँ, which is a dedication. उसके पहले आपको मैं पेज थ्री ई ट्री के बारे में बताना चाहूंगी. जी हाँ, डैलस हैज गॉट अ न्यू फ्लेवर एट हब 121. पेज थ्री ई ट्री, जहाँ पर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. जी हाँ, कबाब्स, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स, यू नो, वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच और डिनर. सो आप विजिट करें पेज थ्री ई ट्री डॉट कॉम फॉर फर्दर डिटेल्स. एंड द डेडिकेशन इज कमिंग फ्रॉम कीर्ति, संदीप, सुरभि, सौम्या. And they are wishing Jayu and Ruchita and Preeti and Piyush a very happy wedding anniversary. So congratulations and lots of best wishes from me, Madhulika, and the entire Fun Asia team as well.

From the movie जब वी मेट, दैट वॉज तुमसे ही. एंड यस, 21 जून होता है वर्ल्ड म्यूजिक डे, एंड फन एशिया इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे. अब मैं आपको बताऊं कि होता है ना कि कहीं अगर आपका मूड अच्छा है तो कुछ अलग तरह के गाने सुनने का मन होता है, कभी दुखी हो तो कुछ अलग गाने सुनने का मन होता है, कोई गाने से कुछ यादें ताज़ा होती हैं तो किसी गाने को आप पार्टी फेवरेट बना देते हैं या एक वेडिंग एंथम, राइट? तो भाई आपको बताऊं दैट बिकॉज एवरी मोमेंट हैज़ अ सॉन्ग, एवरी मूड हैज़ अ मेलोडी, वेदर इट्स रोमांस और हार्ट ब्रेक, अ वेडिंग एंथम और अ पार्टी फेवरेट, वी वॉन्ट टू नो योर टॉप पिक्स. जी हाँ, यू नो जून 15 तक यू कैन फिल आउट आर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज, एंड फनीशिया जो है विल सेलेक्ट द मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स फ्रॉम ईच कैटेगरी. The song that have become the heartbeat of millions. June 21st को World Music Day के दिन every Funasia show will be dedicated to a different music category featuring the winning selection. And यहाँ आता है आपका part. जी हाँ, here's the exciting part. The listener whose song choices make it to our final playlists the most will win exciting prizes. So आप visit करें funasia.net or follow our social media pages for details. Celebrate the magic of music with Fun Asia 104.9 FM. And the next one, well, that's a beautiful, beautiful song taken from the movie Pardes.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
4: Paid for by Mark Hill for Mayor.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
15: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
16: Tracks that put you on the right track.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggest, Just Chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखिए याद, 972-235-5555. करेंगे कुछ मजेदार फन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर, सुनेंगे कुछ मेरी और कुछ आपकी पसंद के गाने.

यस सर, दैट वॉज वेरी मच टेकन फ्रॉम द मूवी ओम शांति ओम। एंड वेल, आ गया है आपके लिए एक गिव अवे। गिव अवे है फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन। तो आपका ये चांस है टू विन कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन। साथ ही साथ आप इंजॉय कर सकते हैं स्पेशल थाली जो उनको आपको मिलती है मंडे थ्रू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ऑनली। ये जो चंडीगढ़ बाइट्स है इज लोकेटेड ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन। यू कैन विजिट chandigarhbites.com फॉर मोर डिटेल्स। अब बात क्योंकि खाने पीने की हो रही है तो गिव अवे का क्वेश्चन भी कुछ खाने पीने से ही रिलेटेड है। आपको मुझे कॉल करके बताने हैं बॉलीवुड के कोई भी ऐसे तीन गाने, टेल मी एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनमें कि कहीं कुछ खाने का आइटम मेंशनड हो, यानी कि उस गाने की लिरिक में कहीं ना कहीं कुछ खाने की डिश मेंशनड हो। द स्टूडियो नंबर 972-235-5555। टेल मी एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स विच हैव अ डिश मेंशनड इन इट्स लिरिक्स।

0: Well, that was Yari taken from the movie Wazir. And मैंने पूछा था आपसे एक सवाल फॉर चंडीगढ़ बाइट्स एलन की तरफ से, जो गिव अवे है विच इज़ अ कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन. एंड सवाल ये था कि आप मुझे बॉलीवुड के कोई भी ऐसे तीन गाने बताएं जिनमें कि कुछ खाने की डिश मेंशनड हो. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi.
0: हाउ आर यू?
1: I am fine, thank you. How are you?
0: Awesome. I'm doing great. And what's your name?
1: My name is Rizwana Hussain.
0: All right, Rizwana. तो बताइए कौन से तीन गाने बताने वाली हैं आप?
1: The first one is Samosa Mein Aloo.
0: अच्छा, तब तक रहेगा तुम्हारा शालू something?
1: The other one is a Punjabi wedding song reference to Laddu and Lassi.
0: Laddu and Lassi. Okay, well done. And एक और?
1: The Lungi dance reference to Lassi.
0: वाह, आपको लस्सी मुझे लगता है ज्यादा पसंद है. हाँ,
1: बिल्कुल. या फिर वो फेविकोल, फेविकोल नहीं है, वो तंदूरी समथिंग.
0: अच्छा, ओके ओके ओके, ऑसम ऑसम. सो रिजवाना, बिल्कुल सही जवाब. आपने जीत लिया है ये चंडीगढ़ बाइट्स एलन की तरफ से गिव अवे. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर, टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू. पर मुझे बताइए कि आपका पर्सनल फेवरेट क्या है, जो इतनी सारी डिशेज आपने बताई या और भी इतनी सारी होती हैं, विच आर द टॉप थ्री फेवरेट ऑफ योर्स?
1: बिरयानी, निहारी एंड तंदूरी चिकन.
0: क्या बात है, ऑसम ऑसम रिजवाना. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर, टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू. वेल, आई एम गोना प्ले अ जलेबी सॉन्ग, बिकॉज मेरा पता नहीं क्यों आज का वो जो मौसम है ना, बारिश हो रही है, धूप आ रही है, सम हाउ मुझे जलेबी की बड़ी याद आ रही है. एंड जलेबी यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है, सो मैं अफगान जलेबी प्ले करके ही खुश हो जाऊंगी. सो आई टेक यू ऑफ एयर, टेक सम डिटेल्स एंड लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग अफगान जलेबी.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
1: Have a lovely day.
0: You too.
1: Bye.

Well, that was a Dil Te Churiyan Chalaiyan from Daler Mehndi. Thank you so much, Mayank, for tuning in and requesting this fun number. Well, it's always fun listening to your request because that gets us a variety of songs, hai na? वेल संडे जस्ट चिल में मैं मधुलिका आपका साथ देती हूँ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद 9722355555. एज यू हैव हाफ एन आवर मोर टू रिक्वेस्ट एनी पर्टिकुलर सॉन्ग दैट यू रियली फील लाइक लिसनिंग टू. ट्राई टू मेक दोज रिक्वेस्ट अ लिटिल पेपी एंड 90s के बाद की. हाँ, सो द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555. दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
5: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो।
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
13: अरे यार, Dallas में पंजाब?
14: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म।
15: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
16: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
17: Tracks that put you on the right track.

वेल, हवन करेंगे ना करेंगे, लेकिन इस बात पर जरूर गौर जरूर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है दैट व्हाई डू वी स्टॉप स्मेलिंग आवर ओन परफ्यूम, व्हाई डज हॉट फूड स्मेल स्ट्रॉन्गर, या व्हाई डू पीपल यॉन व्हेन दे सी अदर्स यॉनिंग. राइट, होता है ना कि कोई आप किसी को यॉन करते देखें तो आपको भी जुमाइयाँ आने लगती हैं. वेल, इस गाने को सुने, उसके बाद में बताती हूँ इस बात का राज. हाँ,

Well, that was Udi Udi Jai, taken from the movie Rais. And इस गाने के पहले पूछे थे मैंने आपसे कुछ सवाल कि कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है that why do we stop smelling our own perfume? तो इसका आंसर बेसिकली कुछ इसी तरह है कि आपका जो ब्रेन है ना, इट ट्यून्स इट आउट. कुछ मिनट्स के बाद आपकी जो नाक है, योर नोज इज स्टिल डिटेक्टिंग दैट फ्रेग्रेंस, बट योर ब्रेन डिसाइड्स इट्स फेमिलियर एंड अनइम्पॉर्टेंट, एंड सो इट पेज लेस अटेंशन टू इट, एंड इसीलिए यू स्टॉप स्मेलिंग योर ओन परफ्यूम. अच्छा, दूसरा सवाल जो मैंने सोचा था कि आपसे पूछूं, या मैं खुद भी सोच रही थी कि व्हाई डज हॉट फूड स्मेल स्ट्रॉन्गर. वही खाना जब ठंडा हो जाता है तो उसमें से उतनी खुशबू क्यों नहीं आती, जब जब वही खाना गरम गरम आता है तो उसकी एक अलग अरोमा होती है. अगेन, इसका भी एक आंसर ये है दैट हीट, जो गर्मी है, इट रिलीजेज मोर अरोमा मॉलिक्यूल्स. तो इसीलिए व्हेन फूड गेट्स हॉट द मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल मूव फास्टर एंड एवेपोरेट मोर इजिली इन टू द एयर, एंड इसीलिए दे रीच योर नोज इन ग्रेटर नंबर्स. एंड इसीलिए गर्म गर्म खाना, वो जो गर्म खाने की स्मेल है वो अलग ही होती है. अच्छा, ये भी देखा है राइट कि आप अगर किसी को यॉन करते देख लें तो आपको भी चाहो ना चाहो यू एंड अप यॉनिंग एज वेल. पता है, साइंटिस्ट आर नॉट कम्प्लीटली श्योर अबाउट व्हाई दिस हैपन्स, बट इट इज़ लिंक्ड टू सोशल बिहेवियर एंड एम्पथी. कहते हैं कि यॉनिंग जो है इज कंटेजियस अमंग ह्यूमंस, एंड इवन सम एनिमल्स डू दिस, एंड दैट्स बिकॉज जो रिसर्च हुई है दैट सजेस्ट दैट इट मे बी कनेक्टेड टू सोशल बॉन्डिंग, अटेंशन, और द ब्रेन्स टेंडेंसी टू मिरर द एक्शन ऑफ अदर्स. तो आप किसी को जब यॉन करते देखते हैं ना, आपको अपने आप ही यॉन करने का मन होता है. सो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स राइट देयर फॉर यू. अच्छा, मैं आप वैसे तो आपको मिलती हूँ जस्ट चिल में सैटरडे एंड संडे 10 AM टू नून होता है मेरा और आपका साथ, लेकिन अगले कुछ दिन मेरा कुछ बोनस साथ होने वाला है आपके साथ. जी हाँ, मैं मिलूँगी कल दोपहर में 2:30 to 5. इनफैक्ट पूरे हफ्ते आपको मैं 2:30 to 5 आपका साथ दूंगी. सो वेल, इट्स ऑलवेज ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलोंग द वे. इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय, बट आप कहीं जाइएगा नहीं. डू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, एज यहाँ हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम. मैं मिलूंगी आपको कल दोपहर 2:30 PM. आई एल बी कवरिंग फॉर किरण, सो आई एल गिव यू कंपनी फ्रॉम 2:30 PM टिल 5 PM ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो. वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉट कॉम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी, परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPS Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
8: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: Now sir, or price?
11: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
13: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
14: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
19: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
20: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

KZM पे 104.9 FM Fun Asia Radio और मैं हूँ आपकी दोस्त नीलम, आपके साथ रहती हूँ आपकी खिदमत में दो बजे तक ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio। फिल्मों की चमक दमक से दूर जज्बात की सच्ची दुनिया में आप सभी का स्वागत है, जहाँ मैं जो गाने आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए बनते हैं। और आप सुन रहे ये कार्यक्रम जिसका नाम है सुरीले लम्हे। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम, हर शनिवार की दोपहर 12 से 2 के बीच में एंड संडेज 1 से 2 के बीच में, जहाँ फिल्मी गानों के साथ ज़्यादातर गुजरती है नॉन फिल्मी मौसीकी की सच्ची आवाज़। जी हाँ, और कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं, कुछ वेब सीरीज की बातें, कुछ प्राइवेट एल्बम्स की बातें, और उसी के साथ कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो आप बार बार फिल्मों में नहीं सुनते। तो चलिए देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत मौसीकी के सफ़र में, जहाँ पर शुरुआत करती हूँ फिल्मी गाने के साथ, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे ज़्यादा सुर और बहुत ही सच्ची आवाज़ है ऑन 104.9 FM।

ए आर रहमान जी का संगीत और उनकी ही आवाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ए आर रहमान साहब जिसे हम मोजार्ट मानते हैं जी, बिल्कुल हमेशा कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ गूंजती रहती है दुनिया के हर एक कोने में। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज़ गोइंग टू वर्क विथ ऑस्कर ऑनर ऑनर नहीं ऑस्कर विनर, जी हाँ, हॉलीवुड के दिग्गज कलाकार संगीतकार हंस जिमर के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। किस फिल्म के लिए? वेल, फिल्म का नाम है रामायण, जो एक बहुत ही एपिक फिल्म बनने वाली है। और उस फिल्म के संगीत के लिए उन्होंने काम वो करने वाले हैं ऑस्कर विनर के साथ। एंड इट्स गोइंग टू बी अ फन वॉच, ऑफ कोर्स फन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अ ग्रेट वॉच, जो अभी इतनी सारी उसकी बात है, इतने सारे चर्चे हैं। तो संगीत के लिए भी आर रहमान जी है और उनके साथ, एज आई सेड, इट्स अ हॉलीवुड कंपोजर, तो देखनी पड़ेगी ये फिल्म बिल्कुल आप सभी को। और 104.9 FM वनेशा रेडियो, मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड। आपका और हमारा साथ होता है जहाँ पे सैटरडेज बॉलीवुड बेस्ड गाने होते हैं और संडेज एक से दो के बीच में जो कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ वो गाने होते हैं ज्यादातर गैर फिल्मी, कुछ ऐसी ही गैर फिल्मी बातें। और 104.9 FM हिमानी कपूर जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज एक बार फिर से सीखो ना, राइट हियर ऑन 104.9 FM।

हिमानी कपूर जो है वो वंस अगेन हमारे बहुत सारे जो रियलिटी शोज़ होते हैं जैसे कि सारे गाँव पर, उनसे ही निकली हुई एक पहचान है, उनसे ही इसी शो से मिली हुई हमें एक नई टैलेंट है जिसका नाम है हिमानी कपूर, और हरियाणा फरीदाबाद की रहने वाली है, लेकिन 17 साल की थी तब भी पहली बार उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। एंड शी वॉज नॉट अ विनर ऑल्दो, और जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि रियलिटी शोज में हर कोई विनर नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उन्हें फिल्म्स मिल जाती है इफ दे आर रियली टैलेंटेड। यही बात हुई थी हिमानी कपूर के साथ, और बैंड बाजा बारात में उन्होंने जो गाना है दम दम मस्त, दैट इज इन द वॉइस ऑफ हिमानी कपूर। और हिमानी कपूर की इस टैलेंट को देखकर जब पहली बार हिमेश रेशमिया ने उन्हें कॉल किया था, शी वॉज थिंकिंग कि शायद किसी फिल्म के लिए यू नो कोई गाना होगा, एक आध गाना मैं गा लूंगी उनके लिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ही इज इन्वाइटिंग हर, हिमेश रेशमिया की मैं बात कर रही हूँ, कि उनकी जो वर्ल्ड टूर होने वाली है 20 कंट्रीज की, वहाँ पे उनके साथ एज अ फीमेल सिंगर के लिए, शी वॉज लाइक रियली मैं हिमेश रेशमिया के साथ। लेकिन हाँ ऐसा हुआ था, शी वॉज एक्चुअली अकम्पनिंग हिमेश जी ऑन हिज वर्ल्ड टूर। तो हिमेश रेशमिया है, देन आई नो विशाल शेखर, शंकर महादेवन, दिस आर द जजेस हु ऑलवेज यू कैन सी देम ऑन द रियलिटी शोज, एंड दे आर जस्ट नॉट जजेस ऑन द रियलिटी शोज कि हाँ चलिए भाई पैसे मिले हैं हमने जज कर लिया और हम स्टूडियो के बाहर निकल गए। दे डू मेक श्योर कि जो टैलेंट उन्हें अच्छी लगती है, जो टैलेंट उन्हें लगता है कि वाकई में ये आगे कुछ नाम कर पाएगी, उन्हें बहुत सारी इनक्रेजमेंट भी देते हैं, उन्हें मौके भी देते हैं। एंड एज आई सेड, नॉट ओनली मौके, एक ऐसे मौके भी मिलते हैं जहाँ पर वर्ल्ड टूर ऐसे आर्टिस्ट के साथ वो कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बातों के साथ मैं रहूँगी आपके साथ टिल 2 PM।

बॉम्बे क्वायर, जी हाँ, ये है बैंड का नाम। और ये बैंड अक्सर बहुत अच्छे अच्छे गाने, जब व्हेन आई से क्वायर, राइट, क्वायर इज़ नॉट अबाउट जस्ट वन सिंगर कि आप उनकी आवाज़ सुनेंगे, हर कोई साथ में इन हारमनी, यू नो, सुर में, संगत में गाते हैं, दैट इज़ क्वायर। और ऐसे बहुत सारे गाने आपके लिए मैं लाती हूँ यहाँ पे 104.9 FM फन एशिया रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड्स। आपका और हमारा साथ एवरी वीकेंड, एवरी सैटरडे संडे आफ्टरनून्स।

104.9 FM फनेशा रेडियो। हमारे बहुत बहुत लिसनर्स अक्सर हमें कॉल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी छोटी सी कोशिश को पसंद करने के लिए, सराहने के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और हमारी पसंद को पसंद करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे डालस फोर्ट वर्थ में अक्सर बाहर से मेहमान आते ही रहते हैं। भाई, हमारे डालस वालों का जो शहर है, दिल वालों का शहर, इसीलिए हम आपके मेहमान, हमारे भी मेहमान हुए, फनेशा रेडियो के भी हुए, है ना। तो अंबिका जी की मौसी आई हुई है नोएडा से, और उनका नाम है सुधा जी। सुधा जी, बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत आपका डालस फोर्ट वर्थ में। उम्मीद रखती हूँ कि आपके लिए ये शहर बहुत ही सुरीला बना रहे, और क्यों ना हो भाई, क्योंकि फनेशा रेडियो है यहाँ पर, तो सुरीला होगा ही। और बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। चलिए, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का। कभी कभी आपने सोचा है कि जब हम 2 घंटे 3 घंटे हमारी ऑफिस में कहते हैं, गोइंग टू डॉक्टर्स ऑफिस, राइट, 3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे, एंड इन ऑल डॉक्टर मिलते हैं 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, दैट्स इट, 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट्स। लेकिन ऐसा नहीं होगा एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। क्यों? क्योंकि उनकी हर एक अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स। जी हाँ, जहाँ पर दे डू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर कंसर्न, योर हेल्थ, और इसीलिए दे हैव 30 मिनट्स अपॉइंटमेंट्स। तो ज़रूर आप जाइएगा इफ़ यू हैव एनी कंसर्न, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ फैमिली डॉक्टर, एंड बिकॉज दे हैव पीडियाट्रिशियन, दे हैव साइकेट्रिस्ट, एंड दे हैव फुल टाइम पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो जहाँ पर आप पैशन ढूंढते हैं, तो दैट इज अ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। नंबर है उनका 2144544046 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, दैट इज 2174544046। यू कैन टेक्स्ट देम, एंड द ईमेल एड्रेस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी फिजिशियंस @gmail.com, एंड द नंबर एक्चुअली इज 2144666259, दैट इज 2144666259। वंस अगेन, दैट नंबर इज 2144666259, और ये है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जहाँ पर 5 नहीं 10 मिनट नहीं, पूरे 30 मिनट्स आपको डॉक्टर देंगे, विच इज अनहर्ड ऑफ, है ना। तो बिल्कुल आप जाइएगा, वंस अगेन दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। आपका हमारा साथ रहेगा कुछ और लम्हे, कुछ और मिनट्स, कुछ और सुरीली बातें, सुरीले लम्हे। यहाँ पे प्राइवेट एल्बम से ली गई कुछ

अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: जाओ।
1: बारिश की जाए जी, बिल्कुल बहुत सारी की जाए ताकि 100 डिग्रीज आए नहीं डालस में, है ना। डालस में 100 डिग्रीज आएगी, आएगी बिल्कुल, वो भी ऐसी धूप आएगी। लेकिन जब तक धूप नहीं है, जब तक बारिश है, तब बहुत अच्छा लगता है। वेदर इट्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस ऐसा लगता है कि बारिश होती रहे। हाँ, इतनी ना हो कि हम ड्राइविंग भी ना कर पाए। अच्छी लगती है मुझे भी बारिश, बहुत अच्छी लगती है। नॉट कि नहीं अच्छी लगती, आई थिंक आई लव रेन, लेकिन आई जस्ट डोंट लाइक व्हेन इट इज़ रेनिंग सो हार्ड। तब लगता है कि अरे यार, आगे कुछ नहीं दिखता, पता नहीं कितनी गाड़ी रास्ते पे है, कितनी, यू नो, इट्स सो मच ऑफ ट्रैफिक एंड कम्यूटिंग बिकम्स सच अ पेन। बट स्टिल, बारिश इज़ बारिश, और बारिश हो या धूप, हम आते हैं आपके लिए यही सारे गाने लेकर 104.9 FM फनेशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर विथ मी योर होस्ट नीलम एवरी वीकेंड।

कारवा ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। अपने ज़माने की एक उभरती कलाकार हो और उसके सामने अपने ज़माने की एक ऐसी शानदार अभिनेत्री जो डेकेड्स तक, दशक तक जिन्होंने दिलों पर राज किया हो, दोनों साथ में आ जाए तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, राइट? हमें लगता है कि इतनी दो टैलेंटेड अभिनेत्री साथ में होगी तो पता नहीं क्या होगी फिल्म। ऐसे ही कुछ बात बनी नेटफ्लिक्स की, मैं कर रही हूँ बात। एक फिल्म है जो हाल ही में रिलीज़ हुई और नेटफ्लिक्स, जिसका नाम है माँ बहन। एंड इस फिल्म में है माधुरी दीक्षित, अपने ज़माने की, मैं कहूँगी फॉर डेकेड्स जो हार्ट क्वीन बनी रही वो माधुरी दीक्षित, एंड उनके साथ है तृप्ति डिमरी। ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है लोगों की, राइट, कि अरे वाओ, दोनों साथ में इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस। लेकिन जब स्क्रिप्ट बराबर ना हो, स्क्रिप्ट इतनी कुछ शानदार ना हो, एडिटिंग क्रिस्प ना हो, डायरेक्शन में कुछ इतनी बड़ी बात ना हो, तब कहीं ना कहीं लगता है कि अरे यार क्या है ये फिल्म, व्हाट इज दिस अबाउट। एनीवे, ये सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, तो अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी ज़रूर देखेगा। इट इज़ रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स एंड अगेन एज आई सेड इट इज़ माधुरी एंड तृप्ति डिमरी। ऐसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की हम करते हैं बातें, कुछ गैर फिल्मी गाने, प्राइवेट आर्टिस्ट की बातें, प्राइवेट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बातें यहाँ पर हम करते रहेंगे आपके साथ टिल 2 PM ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

0: साहिर अली बग्गा ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। देखिए, हम जब भी कोई फिल्म देखने जा रहे होंगे या फिल्म देखनी हो तो वी केयर सो मच अबाउट रेटिंग, राइट? कि भाई लोगों ने क्या कहा इस फिल्म के लिए, क्या कहते थे इस फिल्म की रेटिंग, क्या कहती है IMDB, क्या कहती है वगैरह वगैरह। अब यही बात हो गई है हिंदी वेब सीरीज़ की, मैं बात कर रही हूँ। इफ़ यू आर ऑन द वेब सीरीज़, अगर आप हिंदी हो या बॉलीवुड की, हॉलीवुड की कोई भी वेब सीरीज़ देख लीजिए, हम अक्सर यही चाहते हैं कि भाई रेटिंग उसकी अच्छी हो, राइट? सो हिंदी सीरीज़ में भी अब IMDB की रेटिंग आने लगी है और उनके भी लिस्ट प्रस्तुत करने लगे वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादातर 9 से ज़्यादा उनकी रेटिंग हो, तो ऐसी टॉप 5 या टॉप 6 या टॉप 7 होती है। और उनकी जो टॉप 7 लिस्ट है उसमें 3 या 4 हिंदी, एंड व्हेन दे हैव दिस टॉप लिस्ट, राइट, इट कैन इंक्लूड हिंदी एज वेल एज इंग्लिश सीरीज़। वेल, अच्छी खबर ये है कि उनके लिस्ट में 3 ऐसी हिंदी सीरीज़ के भी नाम है। सो उसमें सबसे ऊपर जो नाम है, अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी, ज़रूर देखिएगा, उसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन। जी हाँ, यह है सीरीज़ का नाम, सपने वर्सेस एवरीवन। और ये एक अमरीश वर्मा का शो है एंड इट इज़ अबाउट, अगेन यू नो, इंस्पिरेशंस, योर ड्रीम्स, योर जितने भी आपके ख्वाब है, आपकी एम्बिशंस है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। उसकी 2 सीज़न ऑलरेडी आ चुकी है। वंस अगेन द नेम इज़ सपने वर्सेस एवरीवन, जहाँ पे अमरीश वर्मा के ही डायरेक्शन है, उनकी ही राइटिंग है और उनके साथ उन्होंने एक्टिंग भी उन्होंने ही की है। तो आप ज़रूर देखिएगा इफ़ यू आर नॉट सीन इट। एज आई सेड, इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट रेटिंग ऑन IMDB। 972-235-5555 उस्ताद सुल्तान खान, जी हाँ, उनके साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज चित्रा जी की।
1: क्या आगे चली लागे तू?
2: माफ कीजिएगा।

प्रिया बसंती ऑन 104.9 एफएम फनेशा रेडियो। अच्छा संगीत, अच्छी मौसी की अच्छे बोल, यही होती है हमारी प्रस्तुति एवरी वीकेंड। एंड ऑन दैट नोट, आप सभी जानते होंगे 21st ऑफ जून इज वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो आपको क्या करना है, यू कैन लॉग ऑन टू vanesha.net और आप आपके पसंदीदा जो भी आपके गाने हैं हर एक कैटेगरी में, यू कैन राइट वन सॉन्ग इन दैट गूगल फॉर्म। अगर आपकी जो गाने की लिस्ट है, आपके गाने की जो सिलेक्शन है, हमारे फाइनल प्लेलिस्ट में आ गई, तो आपको एक्साइटिंग प्राइसेस मिल सकती है। जी हाँ, सो वंस अगेन दैट इज़ vanesha.net फॉर 21st ऑफ जून एंड इट इज़ वर्ल्ड सोशल मीडिया डे नहीं लेकिन वर्ल्ड म्यूजिक डे है। सोशल मीडिया डे रखना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे डे तो हर रोज़ सोशल मीडिया के ही होते हैं, विच इज़ नॉट रियली वेरी गुड एंड हेल्दी। खैर, ये सारी बातें होती रहेगी, म्यूज़िक की ज़्यादातर बातें होती है इन माय शोज, वेदर इट इज़ सैटरडेज या संडेज। आपकी और हमारी मुलाकात शनिवार की दोपहर 12 से 3 के बीच में एंड ऑन संडेज 12 से 2 के बीच में 104.9 FM फनेशिया, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉट कॉम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
5: माई टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPS सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल इस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक टू सुधीर पाई अबाउट 2025 डिजिटल एसेट और क्रिप्टो फंड।
6: इन्फॉर्मेशन शेयर्ड हियर इज फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट फाइनेंशियल और टैक्स एडवाइस। इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। ईमेल wealth@mytimeequity.com फॉर प्रोफेशनल एडवाइस।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
14: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
13: वेट, इतना सब और प्राइस?
14: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं हीरो।
6: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
16: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज़,

0: है?
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
0: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
6: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
7: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहां हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
6: सच में बिल्कुल घर जैसा।
7: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
13: You're listening to 104.9 FM. This is Fun Asia Radio, The Melting Pot. This next part of our show is brought to you by Dream Home Mortgage, who's been helping families achieve home ownership since 1998. They're licensed in all 50 states, and their expert team delivers stress-free, tailored mortgage solutions. So make your dream home a reality with Dream Home Mortgage. For details, be sure to call 972-245-5626. Once again, that's 972-245-5626, or visit dreamhomemortgage.com.
14: And with that, we will slide into our next part of the show. But before that, of course, I know all of you are eagerly waiting to hear the answer to our riddle for today. So this is probably the first time that I can say this in my history of being a radio host on Fun Asia, but every single person who called today gave the correct answer. So all of you guys are incredibly intelligent and incredibly smart, and I am very proud to hear that all of you guys got the correct answer. But alas, there can only be one winner who got it the fastest. So congratulations to Mr. Jeet, who answered correctly that what appears once in a year, twice in a week, but never in a day is indeed the letter E. So most people will obviously think of the time or try to think of something that appears on a day-to-day basis. But if you did some critical thinking, you would realize that the letter E in the alphabet is what satisfies this riddle. Now, all of you got it, so congratulations to all of you. But Mr. Jeet, especially congratulations to you. And here is your requested song that you requested as the winner of today's riddle. This is Tere Liye from the movie Prince.

tagging a digga, tagging a

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ?
2: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस One vibe.
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो।
8: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
11: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
12: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
13: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
12: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
14: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई, और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
15: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
15: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. टुडे इज द 7th ऑफ जून 2026 और हर संडे की तरह आज भी दिल से प्रोग्राम का हम आगाज करेंगे महफिल गजल की सेगमेंट के साथ. एंड आज महफिल गजल में हम आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गजलियात. उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे टिल 6 PM और ये सेगमेंट एज इन महफिल गजल 4 बजे तक जारी रहेगा. आइए शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह साहब की गाई हुई इस फिल्मी गजल के साथ.

कोई फरियाद तेरे दिल में बसी हो जैसे. सुन रहे थे आप जगजीत सिंह साहब की आवाज में ये गजल फ्रॉम द फिल्म तुम बिन. एक बार फिर तमाम सुनने वालों का स्वागत करती हूँ दिल से प्रोग्राम में. मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. महफिले गजल का ये सेगमेंट 4 बजे तक जारी रहेगा. Today's forecast, we're looking at 89 for a high and 70 for a low. Filhal, it is 86 degrees Fahrenheit in the McKinney area. हमारी आज के इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ड्रीम होम मॉर्गेज ने. दे हैव बीन सर्विंग द कम्युनिटी फॉर मेनी मेनी इयर्स नाउ, एट लीस्ट आई वुड से 2 to 3 decades, and with Dream Home Mortgage, your dream of owning a home can become a reality. They make sure that they give you personalized service and make it a smooth, stress-free process. 50 states mein licensed hain Dream Home Mortgage. Whether you're buying your first home, ya upgrade kara rahe hain, ya refinancing mein help chahiye, they can do it all. Just give them a call at 972-245-LOAN, which is 5626, or you can visit DreamHomeMortgage.com. और आइए अब सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको एक और फिल्मी गजल. Now, if there is one you would like to suggest, you're welcome to call us at 972-235-5555.

चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, गुलाम अली साहब की ये गजल निकाह फिल्म से ली गई थी, आपको याद है कि नहीं। 3:25, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात और सेगमेंट पेश किया जा रहा है आपके लिए महफिले गजल का, जिसमें आज हम शोकेस कर रहे हैं बॉलीवुड की फिल्मी गजलियात। और इसी सिलसिले में हम आपको ले चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। सुहेल और मरियम सुनना चाहते थे ये अगला गीत, अगली गजल जो पंकज उदास साहब ने गाई है। ये राज बब्बर और स्मिता पाटिल पर पिक्चराइज की गई है।

0: places only. Fresh Tray Catering. Custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
1: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
2: अरे कहना क्या चाहते हो?
3: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉट कॉम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
6: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्विंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500। The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Funasia.
8: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there, watching our films. Thank you, Funasia Radio, for spreading the word.

0: किसके गम ने मारा,
1: हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी और फिर सही। गुलाम अली साहब की आवाज में सुन रहे थे आप ये गजल एज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट महफिले गजल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, और गुलाम अली साहब की इस गजल को सुनने की फरमाइश की थी मारिया और शरीफ साहब ने। आई होप आप बाकी तमाम सुनने वालों को भी ये गजल पसंद आई। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी गजलियात, अभी भी बाकी है मेरे पास कुछ फरमाइशें जो मैं प्ले करूंगी कुछ ही देर में। स्टूडियो की घड़ी में इट इज 37 मिनट्स पास्ट 3। किसको सुनाए हाले दिल, किसको कहें फसाना तेरा, बहरे थे सारे शहर में कहते थे दीवाना तेरा। इस तरह थे शम्माए दिल में गाते रहे तराना तेरा, हम वो थे जो जल गए कहते थे परवाना तेरा। रंजो अल्म भी काट कर जो हमने बहा दिया लहू, कतरा कतरा चीख उठा हर तरफ था वीराना तेरा। महफिल में तन्हा थे मगर नजरों में काशाना तेरा, हर आंख में उम्मीद थी बस देखना था आना तेरा। हर दर्द था गवारा हमें दिल में बसा याराना तेरा, ख्याल हम ना भूले तेरे हर दौर था जमाना तेरा। किसको सुनाए हाले दिल, किसको कहें फसाना तेरा, बहरे थे सारे शहर में कहते थे दीवाना तेरा।

शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। भावना जी की फरमाइश पर सुन रहे थे हम ये फिल्मी गजल। आई होप आपको पसंद आई। इट्स 42 मिनट्स पास्ट 3। महफिल गजल के इस सेगमेंट में आप तमाम सुनने वालों का खैर मकदम करती हूँ, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रूबी जी। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एक बार फिर अपने सुनने वालों के साथ कनेक्ट करके। रफ्ता रफ्ता जज्बे उल्फत में कमाल आ ही गया, हिजर के पर्दे से पैगामे विसाल आ ही गया। मेरे दस्ते आरजू में लाख नाकामी पे भी वो नहीं तो उनका दामाने ख्याल आ ही गया। फूटी निकली रगे सौदा है तनवीर जुनू, जरे जरे में बयाबां के जमाल आ ही गया। सिर पे सौदाए मोहब्बत पापे जंजीर जुनू, तेरे दर पे वहशीए आशफता हाल आ ही गया। और अगली जो गजल हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बॉलीवुड नहीं बल्कि लॉलीवुड की फिल्मी गजल है, आइए सुनते हैं।

उस्ताद मेहदी हसन साहब की आवाज में आप सुन रहे थे ये फिल्मी गजल एज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट महफिल गजल, जिसे आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताबुन किया है अटर्नी उमर ख्वाजा ने। गॉड फॉरबिड अगर आप किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, गाड़ी का, ट्रक का, या कहीं स्लिप करके गिर जाते हैं, उमर ख्वाजा साहब से कॉन्टैक्ट कीजिए। ही वो फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। 4693005046 उनका नंबर है। आप उनकी वेबसाइट के थ्रू भी उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, attorneyomar.com। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है, और ऐसे में यू नीड समवन हु इज क्वालिफाइड एंड हैज द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू फाइट योर केस। सो याद रखिए नाम अटर्नी उमर ख्वाजा का। आइए कंटिन्यू करते हैं सेगमेंट को जगजीत सिंह साहब की इस फिल्मी गजल के साथ।

चित्रा जी, आपकी रिक्वेस्ट लाइन में है और जाने से पहले हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। आइए फिल्मी गज़लों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आशा जी की इस खूबसूरत गज़ल की तरफ।

इजाजत से ली गई ये गजल गुलजार साहब ने लिखी थी, आवाज आशा भोसले जी की। वेल, जैसे कि हमने आपको बताया था, महफिले गजल का ये सेगमेंट सिर्फ 5 बजे तक जारी रहेगा। सो वक्त आ गया है आखिरी गजल का, और ये आखिरी गजल चित्रा जी की फरमाइश पर हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं।

0: और इसी आखिरी गजल के साथ इख्तिताम होता है महफिली गजल सेगमेंट का। कमिंग अप नेक्स्ट इज आर शब्द सेगमेंट, जिसमें हम एक वर्ड एक लव्स को लेकर आपको सुनाते हैं बेशुमार गाने। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for mayor. Let's build a stronger Frisco together.
9: Paid for by Mark Hill for mayor.
10: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
11: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
10: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
12: अरे वो केक आया क्या?
13: डीजे कौन हैंडल करेगा?
12: डेकोर वाले को कॉल किया,
13: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
12: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
13: ऑसम इवेंट्स?
12: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
13: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
12: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
14: कॉल नाउ एट 214-725-7466, दैट्स 214-725-7466 एंड टर्न योर सेलिब्रेशन इनटू एन ऑसम इवेंट।
15: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
20: हाय डैलस, दिस इज रणबीर कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में। सुन रहे थे आप 1956 में रिलीज हुई फिल्म चोरी चोरी से लिया गया ये गाना लता जी की आवाज में। एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट शब्द में, जिसमें हम एक वर्ड एक लफ्ज लेते हैं एंड वी प्ले मल्टीपल सॉन्ग्स, नए भी और पुराने भी। शुरुआत हमेशा पुराने गीतों से की जाती है, इसीलिए 1956 में रिलीज हुई इस फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। इट्स 6 minutes past 4 एंड यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। आई विल बी विथ यू टिल 6 PM। शब्द सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताबुन किया है तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट ने। दे आर लोकेटेड इन गार्लैंड एंड देव गॉट सम डिलिशियस नॉर्थ इंडियन फूड फॉर यू विद अ होम स्टाइल पंच। अब चाहे आपको तंदूरी प्लेटर ट्राई करना है और यू वॉन्ट चेक आउट देयर रिच करीज, यू विल फाइंड इट ऑल एट तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट। मजेदार कबाब्स, करीज, नान्स, मतलब हर प्लेट समझ ले एक सेलिब्रेशन ही है। सो आज ही विजिट कीजिए तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट इन गार्लैंड। आइए शब्द सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। आई डोंट नो कि इस गाने को सुनकर आप आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कि आज का शब्द क्या है। इफ नॉट, लेट्स ट्राई दिस सेकंड सॉन्ग।

मुझे अंदाजा तो था ही कि हमारे लिसनर्स बहुत स्मार्ट हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स ने इतनी जल्दी कॉल करके गेस भी कर दिया कि आज का वर्ड है उड़ा, उड़ी या उड़ना। सो अब आप समझ ही गए होंगे हमारे सभी गाने आज के सेगमेंट में यानी कि 5 बजे तक सब इसी वर्ड से रिलेटेड होंगे। और जैसे कि हमने बताया, हम शुरू करते हैं पुराने गानों से और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला गाना 50s की मूवीज का था, सेकंड भी 50s के बाद, और अब लेकर चलते हैं आपको 60s की फिल्म के इस गाने की तरफ।

चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मन्ना डे और लता जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म बहारों के सपने, और ये गाना आशा पारेख और राजेश खन्ना जी पर पिक्चराइज किया गया था एंड दिस मूवी रिलीज्ड इन 1967। यू लिसनिंग टू शब्द, आज का हमारा वर्ड और लव्स है उड़ना और उड़ी से रिलेटेड। 50s से अब हम 60s और 60s से 70s तक पहुंच चुके हैं।

हंसनी, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली। 1974 में रिलीज हुई फिल्म जहरीला इंसान से लिया गया ये गीत किशोर कुमार साहब की आवाज में सुन रहे थे आप एज पार्ट ऑफ आर सेगमेंट शब्द। अब मैंने बहुत कोशिश की कि 80s का कोई गाना ऐसा ढूंढूं जिसमें ये वर्ड आता है, तो उड़ना या उड़ने से रिलेटेड तो मुझे कुछ नहीं मिला। अलबत्ता ये एक इंटरेस्टिंग गाना मुझे मिला जो फिल्म विधाता से लिया गया था।

As you can say, इस गाने में उड़ने का तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये उड़ी बाबा जरूर वर्ड यूज हुआ, which is why it became part of our segment शब्द, जिसमें आज हम सारे ऐसे गाने प्ले कर रहे हैं जिसमें उड़ने का जिक्र है. ये गाना 80s से लिया गया था. मैंने बड़ी कोशिश की कि 90s का भी कोई ऐसा गाना ढूंढूं, लेकिन आई गेस 90s में कोई उड़ नहीं रहा था, इसलिए उड़ने से रिलेटेड कोई गाना एटलीस्ट मुझे नहीं मिला. अगर आपको याद आता है तो आप जरूर कॉल करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. 9722355555. एंड नाउ अ मैसेज फ्रॉम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. How much time does your doctor spend with you? 5 minutes? 10 minutes? Well, at Passion Health Primary Care, every appointment is scheduled for at least 30 minutes because true understanding of your health takes time. Because at Passion Health, you're not just a patient, you're a family. For you, for your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care. This is not all, and Passion Health is growing. They're now hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, and psychiatrists for full-time and part-time opportunities. If you are passionate about patient care, send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com, or you can text 45446 for more information. Now visit passionhealthphysicians.com. You can also text 214-666-6259. आइए सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं आपको 2000 की एक फिल्म के गाने की तरफ. And this one is related to our शब्द today.

And this was a song picturized on Sunny Deol. And I hope you guys enjoyed that. Jatt Lutya Gaya, I believe, was the name of the movie. And I think Saathi Manisha Koirala, if I'm not mistaken. 24 minutes past 4, Shabd Ka Segment sun rahe hain. A special shout out to Rosina, Alka and Varsha. In teenon ne hi right away hame bata diya tha ki aaj ka shabd, aaj ka word kya hai, after hearing only two songs. So thank you guys, super smart listeners, I must say. और अब सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे. 2000 का गाना सुनाते हैं हम आपको. वेल 2001 एक्चुअली, और इज इट 2000? आई थिंक 2000 में फाल्गुनी पाठक ने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी. सो हियर यू गो, ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई नो ये आपको अच्छा लगेगा.

0: What a beautiful song. सुन रहे थे आप ये गाना फाल्गुनी पाठक की आवाज में. शब्द सेगमेंट विल कंटिन्यू आफ्टर दिस ब्रेक.
1: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
5: चिकन बनाना, चिकन बनाना
6: ब्रो, बनाना नहीं बनाना, मतलब मेक द चिकन राइट.
7: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We can

या उड़, राइट? एंड इसीलिए हमने ये गाना अपने सेगमेंट में शामिल किया. होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट. एंड बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग, वांट टू टेल यू अबाउट फन पिज्जा किचन. जी हाँ, ऑल्सो नोन एज फन Pizza Kitchen. If you are craving something cheesy with a desi twist, you need to check out Fun Pizza Kitchen, where flavor meets fire. And we are going to be doing a giveaway shortly. And this could be either the Achari Paneer Pizza or the Tandoori Chicken Pizza. Depend karta hai ki aap vegetarian hai ya non-vegetarian pasand karte hai. We will be sharing the question with you shortly. But remember, agar aap win nahi bhi karte, to bhi Fun Pizza Kitchen gives you the best desi pizza out there. इसी के साथ आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ. एंड बिंदु हैड कॉल्ड अर्लियर टू रिक्वेस्ट दिस. आई होप यू आर स्टिल ट्यून्ड इन. हियर इज योर सॉन्ग.

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल गदर. आई होप यू एंजॉयड इट एंड दिस इज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट शब्द, जिसमें हमारा आज का वर्ड, आज का लफ्ज, आज का शब्द है उड़ना, उड़ी.

साथिया फिल्म से लिया गया ये गाना विवेक ओब्रॉय और रानी मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया था और आवाज थी अदनान समी खान की. वेल आफ्टर 2000s वी गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स दैट वर रिलेटेड टू द वर्ड उड़ी उड़ना या उड़. सो आई एम फीलिंग वेरी लकी. आई एम गोना गो अहेड एंड प्ले दिस नेक्स्ट ट्रैक और आपने बताना है कि ये गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है. करेक्ट जवाब देने पर आपको मिलेगा $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. अच्छा एक बात मैं बता दूं, इफ यू हैव प्रीवियसली वॉन समथिंग फ्रॉम फन पिज्जा किचन यू विल ऑटोमेटिकली बी डिस्क्वालिफाइड. सो डोंट ट्राई इट. लेट्स गिव समवन एल्स द अपॉर्चुनिटी टू विन दिस $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. अगेन अगर आप पहले जीत चुके हैं तो आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा बिकॉज आई माइट नॉट नो बट द restaurant does. So when I send your name out there and if they have you in the records, they are not going to honor that prize. So please let give new people the opportunity to win. 972-235-5555 hai studio ka number. Ye gana suniye, still part of our segment Shabd, aur bataiye ki ye gana kaun si film ka hai. Again, 972-235-5555.

कंग्रेचुलेशंस अमीना, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये गाना फिल्म मुझसे शादी करोगे से लिया गया है एंड आई होप ये गाना आपने एंजॉय किया। प्रियंका चोपड़ा एंड सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, जो अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू शब्द, अ सेगमेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम दिल से।

That was Nashe Si Chargai. That was a beautiful song taken from the film बेफिक्रे आवाज थी अरिजीत सिंह की और ये गाना रणवीर सिंह और वाणी कपूर पर पिक्चराइज गया था. यू आर लिसनिंग टू शब्द सेगमेंट. आज का वर्ड है उड़ना, उड़ा, उड़ी वगैरह वगैरह.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Apni roots bhi aur Texas ka swag bhi, dono ek saath ek hi jagah, HEB mein. Royal Sona Masuri rice ho, Nanak paneer ho. या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
7: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
8: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
9: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
10: इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा.
12: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
12: कहाँ?
14: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
11: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
15: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
16: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
17: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
18: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

लेकिन फ्रॉम द फिल्म नमस्ते इंग्लैंड, हो सकता है गाना आपको पसंद आया हो सकता है नहीं आया हो, और अगर नहीं आया तो उसमें सरासर आपका कसूर है। आफ्टर ऑल अगर आप कॉल करके बता देते कि आपको कौन सा गाना सुनना है तो मैं वही प्ले कर देती। 9722355555 है हमारी रिक्वेस्ट लाइन का नंबर।

0: बहुत कठिन है पनघट डगर पनघट की. आई वाज ट्राइंग टू रिमेम्बर इस गाने के वर्ड्स क्या हैं. आई नो द मूवी डिडंट डू दैट वेल. जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म थी ये. रूही हॉरर मूवी थी. हॉरर कम कॉमेडी ज्यादा था. बट यू नो व्हाट, दैट्स जस्ट फाइन. यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव थ्रू रिक्वेस्ट आवर. थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर कॉल्स. आई एम सो ग्लैड कि मेरी म्यूजिक सिलेक्शन आपको पसंद आ रही है और अच्छा ही है. तमाम गाने आपको अच्छे लग रहे हैं. अगर मैं सबकी रिक्वेस्ट प्ले करती और कोई गाना आपको नहीं पसंद आता तब वो मेरा कसूर तो नहीं था, राइट? जिसने रिक्वेस्ट की उसका कसूर है, राइट? बट दैट्स ओके बिकॉज़ दिस शो इज अबाउट यू गाइस. आई एम गोना मेक श्योर दैट आई प्ले ओनली द बेस्ट. आई एम स्टिल टेकिंग रिक्वेस्ट बट वी गॉट टू टेक ए कमर्शियल ब्रेक. सो छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं. ध्यान से सुनिएगा हमारे स्पॉन्सर्स के पैगाम. इन फैक्ट इफ यू वॉन्ट एडवर्टाइज यू कैन कॉल अस हियर 972-235-5555.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens, and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings, and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
5: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, opposite to the कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
6: First ever authentic सात्विक flavors with no onion and garlic.
5: Where every divine food is an offering. Open daily from 7 a.m. Located at Independence and Eldorado. Shri Ayodhya Bhavan, where taste meets divinity.
7: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
8: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
7: कैसे?
8: Page 3 eatery?
7: No, not another restaurant again.
8: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
7: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं.
9: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
12: माँ, रियल

0: पेज थ्री ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
6: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
7: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
8: तन लड़े तो तन मुक जाए, रूह जुड़े तो जुड़ी रह जाए।

अब मैं कोई शिकायत नहीं कर सकती, इसलिए शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ही तो कहा था कि हमारे लिसनर्स की रिक्वेस्ट होनी चाहिए। अब अगर वो टेम्पो चेंज कर देते हैं हमारे इस अपबीट सेगमेंट का, तो इसमें किसका दोष है? सिर्फ मेरा। मैंने ही कहा था कॉल कीजिए अपनी रिक्वेस्ट के लिए। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। रोहन की रिक्वेस्ट पर सुन रहे थे हम ये गाना, दीपिका पादुकोण पर पिक्चराइज किया गया था। द नेक्स्ट सॉन्ग हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय राम कुमार साहब, जो सुनना चाहते थे नमस्ते लंदन का एक क्लब सॉन्ग। वो क्लब सॉन्ग तो मुझे नहीं मिला, ये दूसरा मिला है हिमेश रेशमिया वाला।

अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज किया गया ये गाना शंकर महादेवन की आवाज में सुन रहे थे आप. एंड दिस सॉन्ग वॉज गोइंग आउट टू मलिक रहमान साहब. आई होप यू एंजॉयड द सॉन्ग. आई पिक्ड वन ऑन माय ओन. आई नो आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट की थी वो बहुत स्वीट, बहुत प्यारा है, लेकिन उसका टेम्पो इतना स्लो है कि वो हमारे पूरे सेगमेंट का रिदम जो है वो चेंज हो जाता है उस गाने को प्ले करने में. एंड सिंस राइट नाउ आई एम ऑलमोस्ट रैपिंग अप माई शो, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट वी प्ले अपबीट सॉन्ग्स. गाने तो चल ही रहे हैं, मैंने सोचा कुछ कुछ क्या करते हैं, कुछ आपको कुछ एडवाइस, कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम आपके साथ शेयर करते हैं. ऑलराइट, सो हियर इट गोज. इंसान को हनी बी यानी के मधुमक्खी, जिसे शहद की मक्खी भी कहा जाता है, हमें वैसा बनना चाहिए. यू नो व्हाई? लोग मुझे कहते हैं ना कि आप बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, तो मैं भी आपको इस तरह ज्ञान दे रही हूँ कि आप अगर चाहें तो आप भी बन सकते हैं इसी तरह के मीठे मीठे बोल, आप भी बोल सकते हैं, बन जाएं आप भी शहद की मक्खी, मधुमक्खी की तरह अपनी लाइफ गुजारें, जिंदगी में मिठास रखें और जब बात करें तो शहद की तरह बात करें, बिल्कुल मीठा बोलें. वैसे अगर कोई कुछ बोले तो भी शहद की मक्खी की तरह ही रहें और उसका मुंह सुजा दें.

पूजा हेगड़े और मृणाल एज वेल एज वरुण धवन पर पिक्चराइज किया ये गाना रीमिक्स वर्जन था ऑफ द ओरिजिनल जो कि सलमान खान पर पिक्चराइज किया गया था. एंड इट इज इंटरेस्टिंग हाउ इस गाने में चुनरी हीरोइन ने नहीं बल्कि हीरो ने ओढ़ी है. अब नए जमाने में तो यही होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. You're listening to Dil Se on 104.9 FM.

Don't be shy, बादशाह का ये गाना यामी भूमि और आयुष्मान खुराना पर पिक्चराइज किया गया था. टाइम फॉर अस टू रैप अप द शो. सो इस आखिरी गाने के साथ चाहूंगी आपसे इजाजत. दिस इज अम्ब्रीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर दिल से. आपसे होगी नेक्स्ट सैटरडे को मुलाकात, सेम प्लेस सेम टाइम बिटवीन 3:30 एंड 6 PM राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो.

इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथी आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करती हूं इस खूबसूरत से संडे की शाम में आप सभी का। इस संडे की शाम में साथ रहेगा दोस्तों आपका और मेरा 6 से 8। जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9723555555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली कैसी भी हो, हमें तो अच्छी लगती है। बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।

ब्यूटीफुल 90s की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेलोडीज आप सबके लिए लेकर आई हूँ आज की शाम, यानी कि आज की शाम बोले तो दोस्तों आज है June 7, 2026। जी हाँ, आज फर्स्ट आवर ऑफ आर शो में हम सुनेंगे 90s के ब्यूटीफुल गाने, कुछ तराने, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। तो अगर 90s के कोई गाने आप सुनना चाहते हैं या फिर उसकी सुनने की इच्छा, आकांक्षा या मनोकामना रखते हैं, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। आप जो भी बोलेंगे वो गाना डेफिनेटली 90s का यहाँ पे प्ले किया जाएगा। अमेजिंग सा समा बन चुका है, तो चलिए इसी को कायम रखते हुए लेकर चलती हूँ आपको इस गाने की तरफ।

लव यू ऑल। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

प्यार किया तो डरना क्या से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना सलमान खान और काजोल पे पिक्चराइज था। ये मूवी अमेजिंग मूवी था, अमेजिंग गाने थे और मूवी का भी क्या कहना भाई, बहुत ही कमाल का था। 90s की ब्यूटी आज आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों यहाँ पर मेरी यानी कि मेरे अपने शो पर जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। मैं बोले तो आपकी अपनी आरजे अपूर्वा। अगर आप गाड़ियों में है तो प्लीज मेरे साथ घूमना पसंद कीजिए। 6 से 8 रहने वाला है आपका और मेरा साथ और बहुत खूबसूरत और बहुत ही म्यूजिकल ये साथ रहने वाला है, इसकी गारंटी मेरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक, इसके बाद आने वाला है छोटा सा ब्रेक। जो भी गाने आपको रिक्वेस्ट करेंगे आपको करने हैं 90s से, सो ये ध्यान में रखिएगा।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
3: Paid for by Mark Hill for Mayor.
4: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
5: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
4: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
6: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
7: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
8: चिकन बनाना
9: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
6: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
10: Is sheher ko hua kya? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
11: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक

0: कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, इर्विंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
5: कितने आदमी थे?
6: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनेशिया सुनता है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरेले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, आप भी जुड़ रहते हैं हमारे साथ हमारी फोन लाइन्स के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। 6:35 हो गए हैं स्टूडियो की क्लॉक में और आपको सुनवा रही हूँ 90s के ब्यूटीफुल गाने, कुछ तराने, कुछ मेरे, कुछ आपके पसंद के। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आपको लेकर चलती हूँ ये रिक्वेस्टेड गाने की तरफ। इस गाने की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास मिस्टर अनूप से और ये गाना है टेकन फ्रॉम द मूवी जोश।

ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड सिंह पे पिक्चर ऐसा ये दोस्तों ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी जोश। आपके ख्यालों के मलिका के साथ अगर आप अपना आशियाना या फिर आप अपना घर बसाना चाहते हैं तो ड्रीम होम मॉर्गेज है ना भाई। ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर्स स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस। सो मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद ड्रीम होम मॉर्गेज। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल देम। द नंबर टू कॉल इज 972-245-5626 और यू कैन विजिट their website, which is dreamhomemortgage.com.

ब्यूटीफुल, सो सोलफुल एंड सो मेलोडियस. ओ माय गॉड, बहुत ही फेवरेट गाना है मेरा, ये राजा मूवी से लिया गया है. अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में माधुरी दीक्षित और संजय कपूर पे पिक्चराइज था. इस गाने की ये वाली जो लाइन्स है ना दोस्तों, इट यू नो इट टचेस माई हार्ट लाइक एनीथिंग. इट गोज लाइक

कोई अच्छा गाना और उसकी दो लाइनें अगर मैं ना गुनगुनाऊं तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो मेरे उसूलों के खिलाफ है। 90s की म्यूजिक आप सभी को सुनवा रही हूँ, आई होप आप सभी को एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई गाना आपकी सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है या फिर कोई 90s का गाना आप अपने चहेते यू नो चहेते पर्सन को डेडिकेट करना चाहते हैं तो 9722355555 है स्टूडियो का नंबर।

अगेन अ मास्टरपीस सॉन्ग एंड अ मास्टरपीस मूवी टेकन फ्रॉम द मूवी प्यार तूने क्या किया, उर्मिला मातोंडकर एंड फरदीन खान पे पिक्चराइज था ये गाना। 90s के बहुत ही अमेजिंग गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ दोस्तों। आई होप ये गाने आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। गाने एंजॉय करते करते इतना भी गानों में मत खो जाइएगा कि आपका ध्यान, यू नो वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, बट नज़र हटी दुर्घटना घटी अगर कुछ होता है, लेट्स से इफ़ यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट, विच आई थिंक एंड प्रे कि ऐसा आपके साथ कभी भी ना हो, बट गॉड फॉरबिड ऐसा कभी आपके साथ होता है दैट इफ़ यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और स्लीप एंड फॉल इंसिडेंट, देन अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपेंसेशन दैट यू डिजर्व। दोस्तों डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी स्ट्रेसफुल एंड फॉर ऑल दोज सिचुएशंस यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कंपेंसेटेड। यू डोंट पे अंटिल यू विन, दिस इज देयर मोटो। सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन यू कैन कॉल देम। द नंबर टू कॉल इज 4693005046 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज attorneyomar.com। 90s का बहुत ही अमेजिंग सा सफर आपको गानों के दौरान सुनवाना चाहती हूँ, तो ये रहा आपका अगला गाना।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉट कॉम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
5: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
6: Aaja meri gaadi mein baith ja.
7: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
8: Wo thoda overheating tha.
7: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को,